न्यूज तो ये कि आर नीत इट्स अमेजिंग सिंगर, मतलब कुछ सिंगर होंगे ना जेडे हिक दे जोर नाल गाउन वाले, एक तो ये बई आर नीत 3rd of October 3 अक्टूबर नू गल्फ दे विच पहुँच रहे ने। सो जिन्हें ब्रैम्पटन वाले आ किचन कैम्ब्रिज वाले आ वो गल्फ पहुँचन जी, गल्फ दे विच शो हो रहा है आर नीत दा लाइव। तुसीं जसल भाजी होना गलबात कर सकते हो, तुसीं मेरे तो नंबर ले लियो। आर नीत 3rd of October नू पहुँच रहे ने गल्फ दे विच, ते 10th of October नू जिन्हें भी सानू तुसी लंडन दे आस पास सुन रहे हो 10 अक्टूबर नू सेंटिनियल हॉल लंडन दे विच परफॉर्म कर रहे हैं लाइव आर नीत। तो भाई आर नीत की तो वैसे आप जो गलबात करते हैं म्यूजिक की, यार इन्ना प्यारा प्यारा म्यूजिक आ तुसी मिस कर ही नहीं सकते। सो 905-673-3337 आर नीत 3 अक्टूबर नू गल्फ दे विच, 10 अक्टूबर नू लंडन दे विच।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton।

0: और थानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: आस दी किरण रे ऑफ होप नशा छुड़ाऊ ते पुनर्वास केंद्र दयालपुरा कपूरथला। नशे दी एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है, इस दा इलाज जल्द ते सौखा हो सकता है। आस दी किरण दा मनोरथ है कि नशे दी एडिक्शन करन वाले व्यक्ति अते परिवार नू इस मानसिक बीमारी तो छुटकारा दवाउणा। आधुनिक सहूलतां नाल लैस नशा छुड़ाऊ केंद्र आस दी किरण भारत सरकार वालों मंजूर शुदा है। तुहाडे परिवार दा कोई व्यक्ति या दोस्त नशे दी एडिक्शन विच है तां जल्द इलाज लई 99-151-54-548 लखबीर सिंह संधू MD नू कॉल करो 9915154548। आसान किश्तां विच दे सकोगे। कलेक्शन कॉल्स आउणियां बंद हो जाणगियां, तुहाडियां परेशानियां भी दूर हो जाणगियां। 416-671-0577 416-671-0577। प्रोग्राम है पंजाबी लहरां ते साढ़े एक कॉल होर लेने हैं। जी हाँ, चरणदीप बाठ जी, सर वेलकम।
2: सतिकाल जी।
1: ओ सतिकाल, ठीक ठाक हो?
2: ठीक ठाक जी, होर सुनाओ?
1: बहुत अच्छे, तुसीं सुनाओ?
2: सिद्धमानी
1: हरजीत जंजुवाल। अज हंसराज हंस जी आ रहे ने, उन्हां नाल असीं गलबात करावांगे। 905

0: 500 und tali mi 5 3 9 hani hai par main make sure bhi kar lwa. Yes, 539 वेडिंग एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी दी, ते माता सुलक्खणी जी उन्हां दे वाइफ दा नाम है, यानी कि माता सुलक्खणी जी नाल विआह होया सीगा गुरु नानक देव जी दा। ते ये थोड़ी जी जानकारी मैं थोनों दित्ती, तुसी कुछ ऐड करना बिल्कुल 647-874-1313 ते कर सकदे हो। ते साडे नाल हुण मनजीत जुड़े आ, ते अपलायंस जंक्शन तो आपां अपलायंसिस दी जानकारी मनजीत तो लैंदे आ। मनजीत की हाल चाल?
1: बस वधिया जसविंदर जी, ते प्रोग्राम सुनदे सारे श्रोतियां नूं मेरे वल्लों ते अपलायंस जंक्शन वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल जी। ते इह वीकेंड दीआं स्पैशल डील्स ने। सब तो पहला जिन्हें भी क्लाइंट इस टाइम नवें घरां दे विच मूव होए ने, तुसीं पुराने अपलायंस खरीदे ने, इनवेस्टमेंट प्रॉपर्टी तुसीं लई आ, ते 5 दे 5 अपलायंस दा जे कॉम्बो देख रहे हो। सो इहदे विच 36 इंच वाइड दा फ्रेंच डोर डिजाइन दा सेंसर वाला जे ग्लास टॉप दा इलैक्ट्रिक स्टोव है, टॉल टब दी स्टेनलेस स्टील दी डिशवाशर है, विद द फ्रंट लोड दा वॉशर ते ड्रायर दा स्टेनलेस स्टील कलर दा पेयर है। $6500 दी वैल्यू दे 5 प्रीमियम पे जेड़ा कि सिर्फ 3999 इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकदे आ। जिन्ने भी क्लाइंट इस टाइम अपनी बेसमेंट बनाए, बेसमेंट दे 4 अपलायंसेस दा सैट जिहदे विच स्टेनलेस स्टील दा टॉप माउंट फ्रिज, स्टेनलेस स्टील दा वॉशर ते ड्रायर, $3500 दी वैल्यू दे बेसमेंट दे 4 अपलायंसेस दा सैट है जिहड़ा कि सिर्फ $2599 तुसीं इस वीकेंड अपलायंस जंक्शन ते लगा सकदे आ। इस टाइम काफी क्लाइंट्स ने जिहड़े अपना किचन रेनोवेट कर रहे ने, बिल्ट इन दे विच जे देख रहे हो तां बिल्ट इन अपलायंसेस दा पूरा बंडल सैट जिहदे विच 30 इंच दा आयरन वाटर डिस्पेंसर आ, काउंटर डेप बिल्ट इन फ्रिज, 36 इंच दा बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलेस स्टील दी डिशवॉशर, $13000 दी वैल्यू दा सैमसंग ब्रांड दा बिल्ट इन अपलायंसेस दा सैट है जिहड़ा कि सिर्फ $6999 च तुसीं लगा सकदे आ। ते लास्ट दे विच टीवी सैक्शन च 65 इंच दा मिनी एलईडी 4K टीवी एलजी ते सैमसंग ब्रांड दे विच अवेलेबल है जिहड़ा कि $1100 दी प्राइस तों घटा के ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕਲਾਰਕ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ ਇਜ਼ 905-450-0054-905 ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਟਾਈਮ ਜੀ।
0: ਜੀ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लो जी, मैं अपलायंस जंक्शन का नंबर एक बार थोड़ा दे देव, दो लोकेशन तो सर्व करते हैं, वधिया थानू जिहड़े अपलायंसिज है ना वो इत्थों मिल सकते हैं। क्योंकि ना कई बार जिहड़े अपलायंसिज कितों कितों बड़े महंगे मिलते हैं, पर तुसी इन्हां नूं कॉन्टैक्ट कर लो, बड़े कमाल दे थानू कोई ना कोई गिफ्ट भी दे देंगे। तुसी गुणताल से रेडियो का रैफरेंस दे दो मनजीत नूं, ते दो लोकेशन तो सर्व करते हैं। वधिया अपलायंसिज लैण दे लई बेसमेंट वास्ते चाहिए, अपने वास्ते चाहिए, नवां घर तुसी लिया फिर तां कहिंदे आ भी हुण सब तो वधिया जिहड़ी चीज़ आ वो असी लाइए, है ना, हुंदा इदां। सो बिल्कुल तुसीं जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपलायंस जंक्शन 905-450-0054 ते गलबात हो सकती है। ते लो जी, परमजीत दियोल जी तो भी आपां रियल एस्टेट दी ले लईए जानकारी, ते तुसीं भी कोई बाइंग सैलिंग करनी है जी रियल एस्टेट दे विच, फिर तुसीं नंबर नोट कर लो परमजीत दियोल जी दा, 416-993-7378 416-993-7378 ते गलबात हो सकती है। परमजीत जी, स्वागत तुहाडा।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਣੀਓ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀ ਸਤਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੌਟ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਸੀ ਅਤੇ ਇਗਲੈਂਗਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੀਜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪੀਜਾ ਸਟੋਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਸੇਲ 9000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੈਂਟ ਸਿਰਫ 400 ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੀਜ ਲੌਂਗ 5+5 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਹੀ ਰੀਜਨੇਬਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਟਿਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜਾ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਜੀਜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਲੋਅ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ $499,000 ਆ, ਸਟਿਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ 9937 3 7। ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਬੋਵੇਡ ਦੇ ਨੇ

0: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्कार हंसराज
1: हंस टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंसेशनल हंसराज

0: नंबर 18:07 PM एट द लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा।
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं हल नचिए नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं हल नचिए।
0: फॉर टिकट्स विजिट टिकट मास्टर, फॉर इंफॉर्मेशन कॉल सिंह हरजीत एट 6474481000।
3: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 4165246704, 4165246704।
4: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल्ड रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीयां बनियां किचन कैबिनेट देख के गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरियां किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 दे कॉल कर सकदे हो

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा दो मेरे नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा दो मेरे नाल नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.
3: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है. केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो. नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो.
2: A1 केक्स मंगालिए.
4: ओ आज तां कमाल ही होगी. घरवाली कहंदी किचन च रोटी ओदों ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आउणगे. मैं गया लाइन नी गल उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती.
5: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे. हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते. फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ. 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी. 905-450-2888.
6: ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ. ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ. ਨੰਬਰ ਹੈ 416-526-3535, 416-524-3535. ਵਿਦੇਸ਼ ਹਾਬਰਾ ਫਰੋਮ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ.
7: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 5.

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देखी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. मैं आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: आज
4: गुरबानी रेडियो भी है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री. होर दस क्या चाहिए?
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
4: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ. एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com. और कोई सेवा?
6: पंजाबी विरसा सुल्तान जी, की हाल चाल है सर?
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
6: जी. सर आज फ्राइडे है और इस वीकेंड दे की स्पेशल हो रहा सर?
7: ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨ ਸਟਾਕ ਹੈ. 2 ਜਾਂ 3 ਪੀਸ ਈਚ ਮਾਡਲ ਦੇ, ਈਚ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. 98 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ 98 ਇੰਚ 1999 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ. $3,500 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ

0: भाई वाह, हाँ हाँ, हेलो हेलो जी। ओ भाजी बोलो, दसो कमाल दी गल। बंदा बोले तो सी, महाराज तुम बोलते नहीं, अगो की गल बाबा जी, नेक्स्ट कॉल दे जाने। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: भाई, सत श्रीकाल जी। फिर बोलो जी।
0: ओ बलविंदर वीरे की हाल चाल है?
1: हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया। हो सुनाओ, सीधा ठीक है? आवाज
0: सेहतां देखो, मेरी आवाज तो पता लगता सेहतां किवें दियां।
1: आवाज तो भाई पूरी कड़क भी है।
0: ते बंदे गड़कन आले बैठे हैं, रेडियो दे सिंगर जीत बैठा है।
1: आवाज तो बहुत बढ़िया। कल अज राइट थोड़ी, अज थोड़ी परसों
0: ये बंदे ढिले ढिले थोड़ा बंदे बैठे हैं, ये तो बंदे कैम बंदे
1: भाई।
0: बैठे
1: मैं
0: हैं।
1: थोनू
0: आ जाओ, मिलते हैं।

0: फिट्टे मुतेरे।
1: एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हायर कर रहे ने क्रॉस बॉर्डर एजी ड्राइवर्स, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, डेडिकेटेड ऑटो पार्ट्स, डेली होम रन्स, सेम ट्रक ते ट्रेलर्स, लगभग 10,000 माइल पर वीक मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कुशावा, इटोविको अते बॉल्टन, जे तुहाडी कोल भी है वैलिड एजी लाइसेंस, क्लीन CVOR ते एब्स्ट्रैक्ट, US बॉर्डर एलिजिबिलिटी ते फास्ट कार्ड, ता आज ही एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नु कॉल करो 9058462229 एक्सटेंशन है 4 या फिर 9053348222 यानी 905-846 229 ते या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4।
2: From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.
3: सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दी पिटीशन ते 9 अक्टूबर नु बहस होवेगी। इलेक्शन ट्रेरियो ने एमपीपी हरदीप गरेवाल नूं अखबारां विच इश्तेहार बारे शिकायत बंद कर दिती है, जिहड़ा कि पंजाबी पोस्ट जिहड़ा कि रिडैड वल्लों चलाया जा रहा है उस लई, सो ही इज क्लीयर फॉर दैट। उहदे नाल नाल दिल्ली तों खबर आई है, कुड़ी दोस्त नूं मिलण गई, उहने 3 होर दोस्तां नूं बुला के उस नाल बलात्कार करके उस दा कतल कर दिता। कोहाड़ तों खबर आई है, पुलिस लाइन विच धमाके दौरान 15 पुलिस मुलाजमां समेत 21 जणे शहीद, 80 तों वध

0: ग्लैंड और यूरिनरी जो ब्लेडर है उसके बिल्कुल नीचे के पोर्शन में ये होती है, लोकेटेड है। सो जब ये साइज में बढ़ने लगेगी तो क्या होगा कि फिर वो ब्लेडर पे, यूरेथ्रा पे प्रेशर पड़ता है और जिस करके इसके सिम्टम्स फील होने स्टार्ट होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो इसके जब भी साइज में एनलार्ज होने लगेगी ना, तो सबसे पहला जो सिम्टम आएगा, क्योंकि ब्लेडर पे वो प्रेशर करेगी, तो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। बार बार स्टार्टिंग में रात को नींद को उठ उठ से आपको वॉशरूम जाना पड़ता है कि एक बार जाके आए, विद इन हाफ एन आवर, घंटे के बाद दूसरी बार उठे। सो रात को पहले इनिशियली 2-3 बार उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए। तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कई बार बढ़ जाती है, फिर दिने भी तो रात को भी आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। एंड फिर यूरिन पास करने में भी डिफिकल्टी, कि फ्लो इसका स्लो हो जाना, कई बार रुक रुक के यूरिन पास होता है, वेट करना पड़ता है आपको, और हर बार फीलिंग होगी कि ब्लेडर पूरी तरह जो है वो खाली नहीं हुआ, उसकी स्ट्रीम भी यूरिन की है वो वीक हो जाएगी। एंड फिर यूरिनेशन के बाद फील करते हो कि कुछ एक ड्रॉप्स लीक हो जाते हैं, या बैठते उठते वक्त भी आपको लीकेज की थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। एंड हर बार जाके आए, फिर थोड़ी देर में दूसरी बार जाना पड़ेगा ताकि कंप्लीट यूरिन पास हो, अदरवाइज आपको फील होता है कि ब्लेडर में अभी भी थोड़ा सा यूरिन बचा हुआ है। एंड फिर साथ में जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि पेनफुल यूरिनेशन, कि ये सारे सिम्टम्स होंगे कि प्रॉपर पास नहीं होना, बार बार आपको जाना पड़ रहा है, इसके साथ साथ दर्द होता है, पेन है, बर्निंग है, वाइल पासिंग यूरिन, तो कभी कभार यूरिन पास करने के बाद तक कुछ टाइम तक आपको ये बर्निंग जो है वहां पे फील होती रहती है, दर्द फील होता है, और यूरिन में समटाइम्स इस करके ब्लड भी जाना। तो अगर आप ये सिम्टम्स फील कर रहे हो, कई बार क्या होगा कि एकदम से प्रेशर कर दिया उसने एक जगह पे, तो उसके साथ आपका यूरिन पास होना ही स्टॉप हो जाता है। सो जब यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन में ब्लड जा रहा है, या पेन या बर्निंग है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में वी डू हैव ट्रीटमेंट, तो ये दवाई क्या करेगी कि ये जो स्पीड से ग्रोथ इसका हो रहा है ग्लैंड का, तो उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करेगी। तो नाली आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल पैसेज में ड्राइनेस करके कई बार यूरिन का फ्लो वीक हो जाना, आपको वेट करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, ये सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होगी। और रात को उठ उठ के वॉशरूम जाना पड़ रहा है, जिस करके आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो उसमें आराम आ सकता है। सो फील फ्री टू कॉल अस। प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड कोई भी आपको कंसर्न हो रहे हैं, ग्लैंड का एनलार्जमेंट है, यूरिन की प्रॉब्लम है, या वैसे ही यूटीआई हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहे हैं, ब्लेडर इन्फेक्शन है, किडनीज आपकी वीक हो रही है, किडनी के फंक्शन कट होना, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, या फिर कई बार यूरिन में प्रोटीन लीक होना, ब्लड लीक होना, पथरी बनी है किडनी में, स्टोन्स है, सो किसी भी तरह की नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर मंडे टू सैटरडे सवेरे 10 लेके शाम 6 बजे तक ऑल ओवर कनाडा, यूएस दवाई हम मेल करते हैं। एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इसका कवरेज भी प्रोवाइड करती हैं, तो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। लोकेशन है हमारी 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, मंडे टू सैटरडे सवेरे 10 लेके शाम 6 बजे तक। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड थेरेपी वास्ते नंबर टू कॉल इज 6477602779, 6477602779।
1: एयरपोर्ट और कॉटरल दे बिल्कुल कॉर्नर ते है, जिथे जनक ज्वेलर है, जिथे टर्टल जैक है, उसे प्लाजे जिन्हां दी क्लिनिक है, नंबर फेर दे दो जी।
0: हाँ जी, 6477602779।
1: थैंक यू देव जी, थैंक यू जी। टिक्का जंक्शन 6474294040, केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम, 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम, 6474294040। तुसी इनारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम, 6474294040, 647-429-4040। दुख ए नहीं कि सज्जन कुत्ते निकले, ना ना ना ना, दुख ए नहीं कि सज्जन कुत्ते निकले, कुत्ते हो

0: ओंकार गड्डा सिंह रिपोर्टिंग सर।
1: सत श्री अकाल जी।
2: की हो गया गड्डा सिंह जी?
1: कुछ नहीं होना, की हो?
2: इतने औखे सौखे क्यों बोली जाने हैं?
1: एक मिनट में लात थोड़ी
2: की होया? तुसी आराम नाल बैठो, इत्थे गल की होई है मेनू दसो तां सही।
1: जिहदे नाल मर्जी बिठा लो, हुण ते वैसे भी राती मैं गवांडियां दे गमले लागे बैठा रहा।
2: वैसे मेनू थोड़ी बहुत हिंट तां मिलदी पई आ, मैं चाहुंदी नहीं।
1: पता जिहड़ा उधर मैं कौन रखिया तू?
2: ओहो, ए मेरे करके होया?
1: बस तू इधर मैं कौन रखिया?
2: हां,
1: जांदियां नूं ओह ऑन हो गई।
2: ओहो,
1: उदों ऑफ होई है जदों मैं आख्या हुण ते पक्का ही ऑफ हो चलिया।
2: अच्छा नहीं नहीं सॉरी, मेनू हंसना नहीं चाहिदा। कोई गल नहीं, मैं हैगी है ना, तुसी टेंशन नहीं लेनी।
1: पता की कहंदे आ, चिड़िया दा मरना ते गवारा दा हासा।
2: ए की मतलब आ?
1: मतलब हुण मैं चिड़ी ते बन नहीं ना सकदा। इस करके चिड़िया दा मरना ते गवारा दा हासा, गवारा नूं तू हसी नहीं, तेरा करके लत्तां तड़ालियां मैं।
2: देखो जी, मेरे करके तड़ाइयां ना।
1: हां जी,
2: ते दवाई भी थोनू मैं दवा दूंगी।
1: नहीं आहो जी गल्लां ना कर, पता लग्गिया कि उहने इक तोड़ी दूजी भी तोड़ दे।
2: नहीं नहीं, तुसी ऐ करो,
1: जिहड़ा बंदे ने जरूरी काम जाना हुंदा उत्थों मैं बैठा रहां।
2: ओए होए, इह तां काम औखा, पर चल फिलहाल तुसी चाह ना सार लो।
1: नहीं चाह नाल नहीं सारना, मैं कहूंगा रोटी भी रात दी खवाई जांदी।
2: आए, मैं रोटी भी खवा दिंदी आ, चलो उस तों बाद फिर दवाई दा भी प्रबंध कर लैंदे आ।
1: इन्ना कुछ तू कर ही लेना, हुण माइक बंद कर लै, जो इच्छा
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना होवे।
4: बस इन्नी गल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौड़ी खुमान लेके आए हैं साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: न्यूज़, व्यूज़, गीत, संगीत, हास्य, ठट्ठे दे लेके रंग तहाड़े रूप

0: There are singers. There are performers. And then there are legends. A voice that has defined generations. There are singers. There are performers. And then there are legends. A voice that has defined generations. The one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
1: दोस्तों देश परदेश से प्राइम टाइम रेडियो ने जुड़े हुए हो, मैं थोड़ा अपना होस्ट है तेजिंदर सिंह सिद्धू सिद्धमा बड़ा। एबल ट्रकिंग की मैं तुम्हें जानकारी दी हाँ, वो कहते सानू ड्राइवर चाहिए ने सिटी वास्ते, 2 साल का सिटी का तजर्बा चाहिए, क्लीन तुहाडा ड्राइविंग रिकॉर्ड जिन्हें आप एस्क्रिप्ट कहने इंग्लिश दे विच ओ चाहिए
2: जी,
1: ते सिटी की नॉलेज चाहिए आ, ते पिकअप ड्रॉप का काम है। तो महेंद्र सिंह गरेवाल होर नूं कॉल कर लो 905-838-4346 ते कॉल कर लो। एबल ट्रकिंग वालों जॉब तुहानू मिल जाएगी
2: जी। ते जेकर तुसी अपना इंडिया नूं जाना चाहुंदे हो तो ऑल लिंक ट्रैवल मिसेस आगा दे नाल गलबात करो, रितु धालीवाल जी दे नाल। जे तुसी दिवाली स्पेशल एयर टिकट लेना चाहुंदे हो तो फटाफट इन्हां दे नाल गलबात करो
1: जी,
2: क्योंकि टोरंटो तो दिल्ली तुसी अगले महीने जाके अक्टूबर दे विच जाके दिसंबर दे विच वापसी कर सकते हो दिल्ली तो टोरंटो। ते दिवाली स्पेशल प्राइस है 1890 डॉलर दी, जेहड़ी कि रिटर्न टिकट है, 2 बैग्स दे नाल तुसी ट्रैवल करोगे। 1890 डॉलर दे विच अक्टूबर च जाके दिसंबर च वापसी, 3 महीने इंडिया लगा के आओ, बहुत वधिया मौसम भी होएगा। ते ऑल लिंक ट्रैवल मिसेस आगा ते रितु धालीवाल जी नूं कॉल करो। जे तुसी मैक्सिको वगैरह जाना चाहुंदे हो घूमन फिरन, 3 नाइट्स ते 4 दिनां दा पैकेज जिहड़ा कि इस महीने दे लई सितंबर मंथ दे लई हैगा आ 890 डॉलर दा, उहदे लई वी तुसी अपनी गल्लबात करो रितु धालीवाल जी दे नाल। ऑल लिंक ट्रैवल मिसेस आगा दे नाल काम करदे ने, नंबर है 905-565-8704। ऑल इंक ट्रैवल में सागा ते गलबात होएगी रितु धालीवाल जी दे नाल।
1: बड़ा कब्बा यार, बड़ा भैड़ा बंदा है ना, भैड़ा तो नहीं कहते, कब्बा यार चलता है ना,
2: कब्बा
1: कब्बा बहुत चलता है ना,
2: कब्बा भी बहुत चलता। हाँ जी,
1: कौन चलता भला कब्बा, मैं अगे भी बोल दरना।
2: हाँ जी,
1: गिस्त करो यार, तो इन्ना भी तुम मैं अगे भी बोल दरना यार, बड़ा कब्बा चलता।
2: कौन कब्बा चलदा?
1: कब्बा चलदा बाबा ट्रंप।
2: बाबा ट्रंप
1: इको ही तो बंदा है, कमाल दी गल है। हां
2: जी हां जी,
1: जिदी जिक्र आप करदे सर दुनिया जिक्र करदी बाबे दा ना,
2: बिल्कुल। हां जी,
1: बाबा पुठे चलदा हर एक दुनिया नु वक्त पाया पिया ना।
2: हां जी,
1: ते हुण साडे अपना चंगा भर जांदा सी सेफ क्रॉस दा बॉर्डर, ते इधरों माल उधर जांदा सी, उधरों इधर आउंदा, ट्रक वाले वेहले बैठे, सारे कंपनी वाले वेहले बैठे।
2: हां जी हां जी,
1: अज मेरे इक ट्रकिंग कंपनी नाल गल हो रही सी, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਿਚ ਅਗੇਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ।
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ,
1: ਗਵਾਂਢੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ,
1: ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਕੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਤ ਬਾਹਲੀ ਚੱਕੀ ਆ। ਐਨੀ ਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾ।
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ, 2 ਬੈਗ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਵੇ ਹੈਗੀ $800, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਰਨ ਲੰਡਨ।

0: 515,000
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-457-3381।
1: सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-457-3381।